0: हला हे दिलिया नी हमाला दिले बेने नी खाती हाले हमाला दिले आले खाती हला हे के दिलिया मेना बाहले बेने रेले लो असुत बाला खड़ा रवाली बाहे मेने ले दिलिया खातिला दिले बेना सोए ना अतल दिन असुत बाला येशु स्वाहां से के नाम एन पले आओ
1: रेले
0: हमाला के दियाले हमा दिले